आप सारे जानते हो कि सतगुरां दा आगमन सन 1534 नूं लाहौर चूना मंडी होया है। उस वक्त जदों सतगुरां दा आगमन होया, गुरु नानक देव महाराज उस वेले करतारपुर सन। याद रखियो 1534 नूं गुरु नानक साहब करतारपुर ने 1534 नूं ही भाई मरदाना जी ने शरीर छड्डिया है। उस हिसाब गुरु अंगद साहब जी नूं 1534 नूं, मैं सन की गल कर रहा, गुरु नानक साहब के घर विच सेवा करदिआं 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि भाई लहना जी 1532 नूं करतारपुर गए आ। 1539 तक उन्होंने हुक्म की कमाई की, हुक्म मनिया, उन्होंने 2 साल हो चुके सन। बाबा अमरदास जी इन्हां दिनां दे विच पिंड बस रके सन। कैसी सवादली इतिहासक घटना है कि चौथे पातशाह का आगमन लाहौर हो रहा है, गुरु नानक साहब करतारपुर ने, भाई लहना जी नूं 2 साल हो गए ने गया, बाबा गुरु अमरदास सच्चे पातशाह वह पिंड बासर के लाहौर सतगुरां का आगमन होया। तो जिस शहर के संबंध में यह शब्द असी सतगुरां की बाणी चो पढ़ने, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, सवा पहर, यह शब्द सलोक 12 ते वधीक विच गुरु नानक साहब का उच्चारण किया है। उंज इस संबंधी मैं एक बेनती करदे हां, जदों असी इस सलोक नूं पढ़ने हां ते साडे विद्वानां ने इहदे अर्थ करदे हां एक इतिहासिक पक्ष रखिया है। उंज सीधे ते अर्थ ने कि लाहौर शहर है ते सवा पैर उत्थे कहर वरत रहा है, जहर घुलिया है। प्रोफेसर साहिब सिंह अर्थ करदे आ कि सवा पैर दे अर्थ करदे आ सवा पैर रात रहिंदे आ, कि जिस वक्त खुदा दा रब दा नाम जपना है उस वक्त जीव दे सवाद लई कसाई जीव घात कर रहे आ, वह कहरे नूं कह रहे। प्रिंसीपल तेजा सिंह लिखदे आ कि बाबर दा हमला होया है ते सच्चे पातशाह जी ने उस संबंध विच वचन किया है। पर याद रखियो इस तो अगे एक वचन है, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, अगे है महला तीजा, लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर। इत्थे थोड़ी जी बेनती मैं आपनूं करदिआं कि गुरु अमरदास दे सलोक 12 ते वधीक भी सलोक वखरे ने, पर इत्थे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने नाल दर्ज कर दिता, उत्ते सतगुरां दा सलोक लिखिया लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, थले लिख दिता गुरु अमरदास जी का बचन कि लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर। हुण इत्थे अर्थ कर लग्या ते मैं तकरीबन जदों भी तुहाडे कोल आउणा आप जी दे इस दरबार विच, मैं तकरीबन किते भी वहां कथा लाई मैं सुनना हुणा, जिथे भी कथा वाचू कथा करे, क्योंकि बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा। हुण इस संबंधी एक गल याद रखियो, अर्थ मैं भी कर जांगा पर मैं अर्थां दा दावा नहीं करदा। यह भी सच है कि जदों असी कथा वाचक अर्थ करने हां असी बोधक तल ते स्पिरिचुअल अर्थ कर रहे हां, फिर अर्थ असी बुद्धि दे तल ते अर्थ करने हां, ते जिहदे अर्थ करने पए हां वह अकाल पुरख दे विच अभेद है। इन्नी अभेदता साडे अर्थ हो सकदे आ जी? मैं पिछले सालां च कहा असी जपजी साहिब च 5 खंड पढ़ने, आप जी 5 खंडां दे दर्शन करदे हो, हर खंड विच कहना सौख है कि धर्म खंड मन दा ए मंडल है, ज्ञान खंड एक है, पर संगत जी याद रखियो 5 खंडां विच हजूर ने जिक्र करदिआं एक गल हर खंड विच कह दित्ती कि असी कह दे दित्ता पर अंत नहीं पाया जा सकदा। थोड़े थोड़ी ध्यान नाल सुणे, पाठ रोज करने कि राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिशवी धरती थाप रखी धर्मसाल, तिशवी जी जुगत के रंग तिन के नाम, अगे की है अनेक अनंत, अनंत शब्द ने रोक दिता भी धर्म खंड विच उस जिन्ने भी जीव पैदा हुए ने उन्हां दे नाम उन्हां दे जीवन दी जुगत जेड़ी है अनंत है, अनंत दर ते धर्म खंड विच भी कह दिता अंत नहीं पाया जा सकता। उस तो बाद

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दी हजूरी च बैठ के धन धन रामदास सतगुरु जी गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी दी सिफतां करदियां बाणी दा पाठ करदियां अर्थ करदियां बेअंत भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देना संगत जी समुचे प्रबंध दा समुचे स्टाफ दा आप संगतां दा धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब दियां मेहरां सदका आप दे दर्शन होए वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतसंग जी आप जी नूं बेनती है कि बेशक आप जी ने दरबार विचों बाहर जाना पर बड़े अदब नाल और सहजे सहजे जाने की कृपालता करनी किसी ने काली नहीं करनी। सारी संगत वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भावें सफर का थकेवा और लगातार दिने भी स्टेज उपर कथा करके आए पर फिर भी बड़े प्यार नाल भाई साहब और ने आप संगत की सेवा विच हाजरी भरी है। सतगुरु रहमत करन कल फिर भाई साहब इस तरह आप संगत के दीदार करनगे। सो आओ हुण आनंद साहब जी का पाठ होगा फिर गुरु चरणा विच अरदास होगी जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज राग

ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू। अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला।

देव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत तेहे मिलंत

देखते पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे गावते सुजान रहे बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी गुरु घर दे समुचे ही प्रबंध वालों आप समूह संगतां दा तह दिल तो धन्नवाद है। हार्दिक जी आया नूं बड़े प्रेम नाल बड़ी वड्डी तादाद विच आप जीआं ने पंथ दी मायनाज हस्ती अति सत्कार योग भाई साहिब भाई पिंदरपाल सिंह जी तिना पासों सतगुरु जी दे प्यार दे इलाही बचन सरवण करके लाहे प्राप्त कीते हन। सो आप संगतां ने इसे ही तरह कल दा सत्कार योग भाई साहिब जीआं दा इक दीवान बाकी है इसे समय शाम 7 to 8:30 तक इसे ही तरह आप जीआं ने परिवारां समेत इन्हां समागमां विच दर्शन बख्शिश करने। परसों 8 तरीक तो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं संध्या समय 8 बजे शब्द चौंकियां प्रारंभ हो जाणगीआं। सो आप संगतां ने शब्द चौंकियां दे समय भी वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। 11 तरीक नूं दिन शुक्रवार मुख दरबार साहिब मेन हॉल दे विच श्री अखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ होणगे जिन्हां दे भोग 13 तरीक 13 सितंबर सवेरे 9 बजे पाए जाणगे। सो आप संगतां ने निरंतर ये 13 तरीक तक ये सारा ही वीक होने वाले समागमों में वध चढ़ के पहुंच के हाजरियां भरनिया हुई सरबत भुलां की खिमा सबना का धन्यवाद। हार्दिक जी आया नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

लाव नहीं भाग लीलार उदय तब लाओ भ्रमते फिरते बहुताया काल कोर समुद्र मैं बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुताया तत विचार यह मथुरा जग तारण काओ अवतार बनायाओ जपयाओ जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयाओ सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सचे पातिसा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातिसा सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कोई जानै कवन इहा जग मीत

विसर ना जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलाए लई। मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जोग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए।

सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठसठ का स्नान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहै पिछै पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मुहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से प्रगट जाए, मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवह न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करै विचार, करते कै करनै नाहि सुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, धवलै उपर केता भार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए।

वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा से तिमाल तन कीड़ी तोल ना होवनी जे ते समन हो ना विसर है अंत ना सिफते कहन ना अंत अंत ना करन देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओहो जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जेसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवहै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेहे ता आख ना सकह केई के जेवड पावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै भूल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बैसंतर गावह राजा धर्म दुवारे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आधार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कार कर रखे तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कार कर जिन से माया जिन उपाई कार वेखै कीता अपना जेव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब
ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵੇ ਜੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या करहै विचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कहै नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहु संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्हो गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संतहो कथिहो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ।

कहते पवित्र। सत गुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास।

बिया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाति साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाति साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नू सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो। हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है उथे सुन सकते हो। कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उथे सुन सकते हो। जिथे भी आप जी का ध्यान करके सुन सकते हो सुनना करना जीओ। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं नाम अंतर्गत नहीं सुनदा उन्हां ने सास ग्रास अंतर्गत सिमरन विच ध्यान रखना जीओ। स्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, स्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना। इस तरह स्वास ग्रास अंतर्गत सिमरन विच ध्यान रखना जीओ। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ, दो मिनट मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ।

साहब हो बयान के पात्र ता सही कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मैंने होवे प्रवणता कसमे का मेल पाए सी कसमे पावे सो करे मनु

सवारी संगत जी बहुत प्यार विच जुड़ बैठे हो, आओ बहुत ही प्यार विच आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस चुकाइए, प्यार सहित दोनों हाथ जोड़ करके गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का

गुरु की साजी अते निवाजी होई, गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी, सर्वतर ही माई पहाई गुरसिख बहुत वड्डियां भागां वाले हो, गुरु की अपार कृपा है जी।

कंचन पहयो शब्द गुर सर्वने सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पहनयो अमृत वेले उठ के जाए अंदर दरियाए नवंदे भाई गुरदास साहिब जी सहज समाध अगाध विच एक मन होए गुर जाप जपंदे मथे टिके लाल लाए साध संगत चल जाए बहंदे शब्द सुरत लिवलीन होए सतगुर बाणी गाए सुनंदे किरत विरत भी करनी है सारा दिन किरत कर दे ने संजय सोदर गावंदे शाम नूं फिर गुरु गुरु जी दे जाप नूं जपदे ने सोदर दा जाप जपदे ने संजय सोदर गावंदे कर मेली मन मेल मलंदे राती कीर्तन सोहिला कर आरती प्रसाद वड़ंदे गुरमुख सुख फल पेरम चखंदे पिछल राती जागना नाम दान इशनान दरडाए मिठा बोलन निव चलन हथों देका भला मनाए थोड़ा सबना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए खाल खाए सो

गुरु सुवारी संग जी जो तुद सच ध्यान दे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तन की बरकत खाहे असंख करोड़े बेअंत भुलां दियां माफियां सब संगत दी हाजरी प्रवान प्यार सहित आखो जी सरबत दा बोलो रोजाना दी तरह सरबत दा गज के बोलो सरबत दा नानक नाम तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कह नानक सुनो संतो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे पंच दूत तुद वस कीते तुर कर्म पाया तुद जिन कौ कह नानक तै सुख होवा अनद सुनो वड भागी हो पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे संत साजन भए सरसे सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे सलोक पवन गुरु पाणी पिता दिवस रात दोय दाई दया चंगे आईया।

ज्यों बोलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो,

सारी संगत प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे पंडौर ज्ञान दे सागर

जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपीजै रे। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बोझ सुख पाइए रे। जो प्रभु करै सोई पहल मन हो सुख दुख ओही त्याइए रे।

निरपाप है मन होई, होमे मैल गवाया बलराम जीओ। निर्मल पाओ पाया हर गुण गाया, हर वेख राम हदूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रहया पर पूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाव चलाए, अनहद शब्द बजाए। जन नानक दूजी लाव चलाए,

प्रभु मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया,

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै,

तेरी तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं कोई ना जाने तुमरा उच्चे ते उच्चा सगल समग्री तुमरा सूतर तुम ते हो ए सो तुमरी गात मित तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एको अंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आई फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराउ श्री हर आई श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावै ताई सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दित्ते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही तनहां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह ब्रत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगहो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नी ओटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे आप जी दी हजूरी अंदर शुभ आनंद का लड़का भाई गगन दीप सिंह पिता सरदार सिकंदर सिंह ते माता तजिंदर कौर जी लड़की बीबा शाइन दीप कौर सपुत्री सरदार गुरदीप सिंह माता दलजीत कौर जी तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए लावां दा पाठ करदियां कीर्तन करदियां सेवा करदियां आप जी दे दासरियां पासों बेअंत भुल्लां बख्श देना कृपा करनी सुभाग भरी जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण अंग संग हो के सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नास करने सुखां दे प्रवेश करने परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना जी
ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਿਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ।

सोरठ महला पंजवां गोरपुरा पेट्यो वडभागी मनह भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा गोरपुरा पेट्यो वडभागी मनहि भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर का बलहारा

आओ अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपौ पए गुरचरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवन हारा कंठ

0: बख्शी खुशियां खेड़े हाँ बख्शी खुशियां खेड़े हाँ बख्शी खुशियां खेड़े
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिया संगतां दा अंत दे विच फिर दोनों परिवारों नूं लख लख वधाई दिंदे आ सो साडे अति सत्कारयोग वीर रविंदर सिंह जी बहुत प्यार दे नाल ओह वी तुहाडे नाल वचन करके गए सो बहुत प्यार वाले ने गुरु प्यारे तकरीबन सानू एक हफ्ता होया तुहाडे इस शहर दे विच आया नू एक महीना तुहाडे नाल रवांगे ते गुरु प्यारे तुहाडे नाल प्यार बना के जावांगे सतगुर कृपा करन सो अगला प्रोग्राम अति सत्कारयोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी ग्रंथी साहिबान उन्हां दे पासों आपां सरवण करदे आं ढाडी जथे नू बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह इस सन गुरु घर दा ढाडी जत्था ज्ञानी भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वाले जिन्हां ने आप जी नूं विआह दे संबंध विच ढाडी वारां सरवण कराईआं ने हुण कड़ा प्रसाद की देग वरताई जा रही उस तों बाद जो सगन की रस्म है मेन दरबार दे विच लड़की लड़के दे माता पिता ने ही सगन पाउणा है बाकी संगत ने इत्थे सगन नहीं पाउणा बाहर टेंट विच पाउणा नाले तुसीं उत्थे लंगर छकना है ये बेनती प्रवान करनी दूसरी बेनती आपां सारिआं ने गुरु साहिब दा सत्कार करना है ना आपां गल्लां करनीआं ने ना आपां गुरु साहिब वल पिट करनी है सो आपां गुरु साहिब नूं सारे प्रगट गुरां की देह मनदे हाँ सो गुरु साहिब हाजर नाजर हन कृपा करके जरूर बेनती प्रवान करनी भी गल्लां आपां बाहर भी जा कर सकते हैं पर गुरु की हजूरी विच नहीं काम ये करना जी माता पिता ही सगन पाउणगे लड़की लड़के दे बाकी संगत ने इत्थे सगन नहीं पाउणा बाहर टेंट विच पाउणगे इत्थे ही हुण सारी समाप्ति है जी हुण समां ढाडी वारां दा है नाल आपां ढाडी वारां भी सरण करनियां ने जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कौ काटे अपहर आनंद गाए आहिट माल कौशक संग लाए पुन आयो है डोला पंच नार संग आहिटो सत उठाए तान कलोला गायन तार मिलावई तहलंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस हिरी रह पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगल सहाए सरस बन हाय बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा आइट पुत्र मैं कह सवारी पुन आई दीपक की बारी काचेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के तापा

तापी सालू सारग सागरा और घंड घाभीरा आइट पत्र श्री राग के गंड कंब हामीरा काइटम भीग राग भय गावे पंचो संग बरंगन लावे सोट गौन मलारी तुनी पन गावे आसा गुन गुनी ऊंचे

दंडौत बंदन अनिक बार सर्वकला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभ आया

चलायो सब सिखन कौ हुक्म है गुरु मान गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह जो प्रभु कौ मिल वो चाहे खोज शब्द में।

रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए।

हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपतासह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हार रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कासट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए ना किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया, उडे ऊड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खड़ावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना।

मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पो सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता। तेरी अनिक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहुत सिमरत सासत जी। कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा। तू

तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ पई ले निवासा, पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चल। हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक

मिल साध संगत भाज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध।

चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझ

प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जाब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा।

गहे हो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के गहे

तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच बिखादी एक गरीबा राखो हो राखन हारे।

अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अर

देव सदा सुख पाया, हर राखिया उर धारी। एहो मनुआ दह दिस धाम दा, दूजे पाए खुआया। मन मुख मुगद हर नाम ना चेतै, बिरथा जन्म गवाया। सतगुर भेटे ता नाउ पाए, हमें मोह चुकाया। हर जन साचे साच कमावह, गुर कै शब्द विचारी। आपे मेल लए प्रभ साचै।